मन्ना जी हेमंत कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाजों से सजी ये रचना राहगीर फिल्म से आपने सुनी। 1969 रिलीज ये फिल्म गुलजार की लिखी रचना थी, हेमंत कुमार का संगीत था। साथियों, इस दुनिया में हमारे माँ पिता ही हमारे भगवान होते हैं, जिन्हें हम आंखें खोलते ही पाते हैं, हमारी परवरिश करती हैं वो। इन माता पिता को, हर माता पिता को नमन करते हुए सुनते हैं ये रचना।

आशा भोसले और साथियों की स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। मदन मोहन का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना आपकी परछाइयां। ये था फिल्म का नाम जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में।

लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी एक ही रास्ता फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हेमंत कुमार का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी।

मुकेश और लता मंगेशकर साथियों के स्वरों से सजी ये रचना शोर फिल्म से अभी आपने सुनी। आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सुनिए ये रचना।

आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये रचना आप सुन रहे हैं चारुशीला शांताराम और साथियों के स्वरों से सजी। फिल्म का नाम फूल और कलियां। इसी रचना के साथ आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा, वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is

Welcome back, listeners. You're listening to Rainbow FM 101.9, and that was Lost Stars by Maroon 5. Yeah, so we were discussing about literacy. अब बात करते हैं इंडिया की. इंडिया में लिटरेसी को लेकर पिछले कई डिकेड्स में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जब हम स्टेट वाइज डेटा देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS 2023 और 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट 80.9% था. 7 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए अगर हम कुछ स्टेट्स को देखें तो मिजोरम का लिटरेसी रेट 98.2% है और नागालैंड 95.7% एंड केरला 95.3%. और इसमें सारे पहले दो और पांच स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट से ही है, यानी कि मेघालय 94.2% और त्रिपुरा 93.7%, बाद में गोवा, तमिलनाडु और हमारा राष्ट्र तेलंगाना 76.9% पर कड़ी है. एंड उसके बाद लास्ट बिहार 74.3% और आंध्र प्रदेश 72.6% पर है. ये नंबर्स PLFS 2023 और 24 के

ऑफिशियल डेटा से लिए गए हैं, लेकिन यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट समझना ज़रूरी है। अगर किसी स्टेट का लिटरेसी रेट ज़्यादा है और किसी स्टेट का कम, इसका मतलब यह नहीं है कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल नहीं। लिटरेसी रेट एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, स्कूल तक एक्सेस, एजुकेशन की क्वालिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस, जियोग्राफी और जेंडर इक्वालिटी, साथ के साथ फैमिली सर्कमस्टेंसेस और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी। इसलिए लिटरेसी रेट को कंपटीशन की तरह देखने के बजाय हमें उसे एक इंडिकेटर की तरह देखना चाहिए। सवाल यही नहीं होना चाहिए कि कौन सा स्टेट फर्स्ट है और कौन सा लास्ट, सवाल यह होना चाहिए क्या कर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, या हर एडल्ट को बेसिक लिटरेसी सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और क्या एजुकेशन उनकी लाइफ को जेन्युइनली इम्प्रूव कर रही है। यही डिस्कशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। अभी मैरून 5 का मेमोरी सुने हैं आप, और एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है, क्या कॉमन सेंस भी लिटरेसी का पार्ट है? टेक्निकली तो नहीं, कॉमन सेंस लिटरेसी रेट में मेजर नहीं होता, लेकिन डेली लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपके पास एक डिग्री हो सकती है, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशंस में सही डिसीशंस लेना एक अलग स्किल है। मान लीजिए व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशंस आपने लॉटरी जीती है, अपना OTP भेजिए। मैसेज पढ़ना लिटरेसी है, लेकिन OTP शेयर नहीं करना अवेयरनेस और कॉमन सेंस है। या फिर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन नहीं, रोड काली दिख रही, लेकिन फिर भी वेट करना कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान हर सिचुएशन में परफेक्ट डिसीजन लेगा। इसका मतलब है सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना। कभी कभी हम किसी पर्सन को हाईली एजुकेटेड देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑटोमेटिकली सेंसिबली होगा, लेकिन एजुकेशन और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है। एजुकेशन नॉलेज दे सकती है, एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, और कॉमन सेंस हमें एवरीडे सिचुएशंस में बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर हम एक और टाइप के लिटरेसी के बारे में भी सोच सकते हैं, लाइफ लिटरेसी, जिंदगी को समझने की एबिलिटी।

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू रेनबो एफएम 101.9। अभी आपने सुना है जालिमा री से फिल्म से, और आपको शायद पसंद आया है सारे ट्रैक्स जो अभी मैंने प्ले किया। और हम आज लिटरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, या आज की लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी दोनों एक ही है? आज के ज़माने में सिर्फ पढ़ना लिखना इनफ नहीं है, हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं और सोशल मीडिया भी, वीडियोस देखते हैं, एआई टूल्स यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी, और हर दिन हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती जाती है। तो डिजिटल लिटरेसी क्या है? डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ स्मार्टफोन चलाना है, या तो डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ हम टेक्नोलॉजी को कॉन्फिडेंटली और क्रिटिकली यूज़ करना आता है? मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री गिफ्ट मिल रहा है, इस लिंक पर क्लिक करें। आपने ये मैसेज पढ़ लिया, पर क्या आपने चेक किया कि मैसेज जेन्युइन है या नहीं? यहाँ लिटरेसी के आगे अवेयरनेस आती है। या फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, सब लोग शेयर कर रहते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो सच है? ज़रूरी नहीं। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना ही इनफ नहीं, हमें इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करने भी ज़्यादा ज़रूरत है। सोर्स चेक करना, कॉन्टेक्स्ट समझना और ज़रूरत पड़े तो वेरीफाई करना भी आना ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में यह और भी

इम्पॉर्टेंट हो गया है। ऐसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो क्रिएट किए जा सकते हैं, तो डिजिटल लिटरेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और साथ ही उसके लिमिटेशंस को समझना। एक सिंपल लाइन याद रखिए, मैसेज को पढ़ लेना लिटरेसी है, मैसेज सच है या नहीं या चेक करना डिजिटल लिटरेसी है, लिंक पर क्लिक करना टेक्नोलॉजी है, लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए या समझना है वो तो अवेयरनेस से आती है। तो फिर आपके लिए एक और गाना आ रहा है, स्टे ट्यून्ड।

वो एक ब्यूटीफुल ट्रैक पीके मूवी से है, संग बाय श्रेया घोषल. और ये कितना सुनसान म्यूजिक होता है ना, कि इस लिरिक्स में मुझे ज़्यादा पसंद आती है कि सारे चीज़ वो आमिर खान के बारे में बहुत सारे बोलती रहती है. ओके, कमिंग बैक टू आर टॉपिक, हम लिटरेसी डे के बारे में बहुत सारे बात की, और पर एक सवाल है, वाई डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे? सो दिस डे वॉज प्रोक्लाइम्ड बाई यूनेस्को इन 1966 एंड इट हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी सेप्टेम्बर 8 सिंस 1967. द पर्पज वॉज ट्रूली टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी एंड एनकरेज एफर्ट्स टू एड्रेस लिटरेसी. सो इस ईयर 2026 इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मार्क्स द 60th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे. सो द थीम ऑफ दिस ईयर इज लिटरेसी फॉर पीपल, द प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी. द थीम रिमाइंड्स अस दैट लिटरेसी इज नॉट ओनली अबाउट इंडिविजुअल अचीवमेंट, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सोसाइटी, अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर वी बिल्ड. Despite decades of progress, millions of youth and adults around the world still lack basic literacy skill. So, International Literacy Day is not simply a celebration, it is also a reminder that there are still people who need access to education, a reminder that quality matters as much as access, a reminder that literacy needs to evolve the society, and a reminder that learning should continue throughout life, from basic literacy to financial literacy, from health awareness to digital literacy, from understanding information to questioning misinformation, from learning in a classroom to learning from everyday life. Literacy is no longer just about knowing how to read the world, it is also about knowing how to understand and evolve along with it.

स्टूडियो पे टाइम 10:56 है और कुछ ही देर में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस, बट बिफोर दैट हियर कम्स अ ट्रैक।

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ रंगीन है। और अभी आपने सुना है चक दे इंडिया से मौला मेरे गायक कृष्ण बेरुआ है।

0: ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲತಾ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे. वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे. अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है.
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में. वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से. उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे. ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे. 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया. जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया.
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे. इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है. रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे. विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की. श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है. नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ. जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे. ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी. आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है. 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे. श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया. सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है. भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया. कप्तान अनमोल

अमेरिका ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

टेंशन, स्ट्रेस या एंग्जाइटी जैसे कि घबराहट होती है, तो उसे अरे कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा कहकर टाल देते हैं। सच तो ये है भाई कि जैसे शरीर जाएगा कहकर तकता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी तकता है। हर वक्त खुश रहना या स्ट्रांग बने रहना मुमकिन नहीं है, और कभी-कभी लो फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए दिल खोल कर अपनों से बात करो, ज़रूरत पड़े तो थेरेपिस्ट से मिलने में मत हिचकिचाओ और खुद को थोड़ा ब्रेक दो। आखिर जान है तो जहान है। अगर आप इस पैराग्राफ को बहुत समझ पाए तो दैट वुड बी रियली नाइस इफ़ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। हियर कम्स अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक।

Well, that was an energetic track, Tumhi Ho Bandhu, from the film Cocktail. But coming back to our thing, we were listening to Namaste Hello Adab on FM Rainbow 101.9, and अभी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हो रहा है. आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है. अक्सर हम शारीरिक बीमारी पर तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन जब दिमाग में

सो लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इन टू एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ रंगीन है। एंड यस, सो रिसेंटली आई हैव बीन टू अ स्पोर्ट्स डे, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ यंगस्टर वील बी इजिली डिटरमाइनिंग समवन हु इज़ विद ग्रे हेयर व्हाट ही कुड प्ले वेल और कैन बीट हिम इजिली, राइट? सो सेम थिंग हैपन विद मी वेन देर वॉज एन स्पोर्ट्स डे कंडक्टर इन माई ऑफिस। सो वेन आई विजिटेड देर आई थॉट आई वुड बी, you know, rocking, and I could win few of the medals.

0: Welcome back, listeners. That was a beautiful track, Chamak Chalo, from the film Ravan. And of course, the question which I've asked, what is that one skill you have taught to someone and what was it? And how did it give you happiness by teaching them? So here with us, there is one caller I'm connecting with.
1: Very, very, very good afternoon, madam. I'm Srinivas Rao, Malakpet, ma.
0: Yeah, Srinivas, I guess you have heard about the question which I've asked. So what would be your answer for it?
1: Yeah, what is the question, madam?
0: What is that one skill you have taught to someone and you felt immense happiness by teaching them?
1: Okay. So we are on air?
0: Yes, we are on air, you could see.
1: तो हम तो हमारे पास यहाँ पर पार्क है मैडम
0: ओके
1: डेली मॉर्निंग एट अबाउट 5 o'clock आई विल गो टू द पार्क सिंस सो मेनी इयर्स आई एम गोइंग देयर
0: नाइस
1: बिकॉज़ आई विल डू माय योगा एंड अदर थिंग्स
0: ओके
1: तो वहाँ पर क्या होता है लोग जमते हैं तो हम लाफिंग भी स्टार्ट करें सबको बोलते रहते हैं कि अपन लाफिंग भी करना क्लैपिंग भी करना और योगा करने से बहुत ही अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ मेडिटेशन करे तो भी बहुत अच्छा रहेगा तो उसके साथ जो है सो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा स्ट्रेस रहेगा इसके बारे में सब बोलते रहते सब लोगों करते रहता हूँ
0: okay.
1: तो 6:45 को हमारा लाफिंग होता है
0: तो आप ये सब
1: हम...
0: सिखाते हैं उधर
1: क्या माँ हाँ माँ
0: अच्छा
1: मैं बोलते रहता हूँ लोगों को बिकॉज सिंस सो मेनी इयर्स आई एम स्टेइंग इन द लोकेलिटी आल्सो सिंस सो मेनी इयर्स
0: ओके
1: तो उससे क्या होता है वो तो उनको भी जरा अच्छा मालूम पड़ता है और नॉट लेस देन 32 to 40 पीपल विल अटेंड माय
0: सेशन ओह दैट्स गुड
1: ऐसा उसमें छोटे छोटे लोगों को बुलाते हैं और योगा भी कराते हैं योगा भी सिखाते हैं हमारे पास भी गवर्नमेंट से लिए थोड़े लोग हैं वो लोग भी आके बोलते हैं क्लैपिंग कैसा करना कैसा करे तो क्या होता उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं एक वीकली वंस या मंथली वंस जैसा जैसा चाहे वैसा वैसा हम लोग डेली करते रहते हैं
0: ओके
1: तो दिस इज द एक्टिविटी डेली आई विल डू वी आर डूइंग इन द पार्क
0: ओके दैट इज सो नाइस ऑफ यू श्रीनिवास एंड यू आई विश यू कंटिन्यू दिस फर्दर थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस दिस देयर आर नेक्स्ट यू कॉलर्स फॉलोड विद अस बिफोर दैट हियर आर फ्यू प्रोमोस
2: हिरानी चाय
3: बन मस्का
2: हैदराबादी बिरयानी
3: टंगडी कबाब
2: कुर्बानी का मीठा
3: शहदूद मलाई
2: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
3: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड
2: एग्जैक्टली दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
3: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9
2: इट्स नॉट जस्ट फूड
3: इट्स कल्चर हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन
2: जश्न ए हैदराबाद
0: Hello, Rainbow.
4: Kinna paatu paadachana?
0: Hello, Rainbow.
4: Hello,
0: so,
4: Rainbow.
0: You have listened to the question, right? May I know your name? And I guess you have understood the question. So, could you please share your experience with it?
4: Hello.
0: Hello.
4: I'm Divya. I'm Ramana.
0: Yeah, yeah. Chappandi.
4: నేను అయితే నాకేమంటుందంటే నేను భగవద్గీత ఎక్కడ నేర్పించడం నాకు సంతోషంగా ఉంటుంది భగవద్గీత కానీ పాటలు కానీ అవి నేర్పించినప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకుని పాడేటప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటుంది ఇది
0: కంప్లీట్
4: నాకు హలో చిన్నతనం నుంచి కూడా నాకు వాళ్ళు నేర్పించి భగవద్గీత నేర్పించడం కానీ భగవద్గీత పాడడం కానీ భగవద్గీత చదవడం కానీ నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగజేస్తుంది అమ్మా కాబట్టి చిన్న పాట పాడొచ్చునా
0: తప్పకుండా
4: జననీ శివకామిని జయ

0: हेलो रेनबो, तो आपने
1: हाँ
0: क्वेश्चन
1: जी
0: सुना है ना?
1: हाँ जी हाँ जी, मैं विलास तेंदुलकर मल्लाकुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ।
0: जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो क्वेश्चन
1: हाँ
0: मैंने
1: जी
0: पूछा।
1: हाँ जी, मैं भारतीय योग संस्थान नाम की एक संस्था है, उस संस्था के अंतर्गत यहाँ पर कई जगहों पर योग केंद्र चलते हैं और ये

0: सारे योग केंद्र निशुल्क चलते हैं।
1: ओके
0: वहां पर मैं योग कक्षाएं लेता हूं और साथ साथ मेरे जो साधक हैं उनमें से कुछ साधकों को शिक्षक भी बनाता हूं।
1: ओ बहुत बढ़िया।
0: उन साधकों को आसन कैसे लेना है, आसन की जानकारी कैसी देनी है, प्राणायाम कैसे लेना है, कौन कौन से प्रकार के प्राणायाम है, उसमें कुंभक क्या होता है, और ध्यान के बारे में भी मैं उनको जानकारी देता हूँ, ताकि आगे चल करके वो स्वयं स्वतंत्र रूप से कक्षा ले सके। दूसरी
1: ओके
0: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरा मुद्राओं का भी अभ्यास है, तो मेरे साधकों को मैं मुद्राओं के बारे में भी जानकारी देता हूँ। वैसे सभी सुनने वालों के जानकारी के लिए, हर व्याधि के लिए हम मुद्रा कर सकते हैं और उस मुद्रा के द्वारा उस व्याधि से हम बाहर आ सकते हैं। हर व्याधि के लिए मुद्रा है। जैसे उच्च रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप है, थायराइड है, मधुमेह है, इन सारे व्याधियों के लिए मुद्राएं हैं, और उन मुद्राओं का अभ्यास करने से आपको औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है।
1: वो तो बहुत अच्छा है। आपने जो
0: हाँ
1: ज्ञान दिए थे वो बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत मदद करता है, तो थैंक यू
0: और एक
1: आप।
0: बात मैं
1: और
0: नहीं नहीं और एक बात मैं बताना चाहूंगा, मुद्राओं के साथ साथ मेरा एक्यूप्रेशर का भी अभ्यास है, और कई व्याधियों को केवल एक्यूप्रेशर द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: वो
0: जैसे
1: बहुत
0: कि
1: अच्छा
0: कमर
1: है। हाँ
0: कमर में
1: मैंने
0: दर्द
1: अभी
0: है,
1: सुना है और
0: हाँ
1: दूसरे भी कॉलर्स भी लाइन पे खड़े हैं, तो
0: मैं
1: थैंक यू।
0: इसको पूरा करता हूँ मैं एक्यूप्रेशर के बारे में। कमर में जिनको दर्द होता है ना, हरिओम।
1: हरिओम, थैंक यू, धन्यवाद।

0: Well, that was a beautiful and energetic track, Ranjana. And हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे खड़ी है और हमको लाइन पे ले रहा है. हेलो रेनबो.
1: हेलो रेम्बो, गुड आफ्टरनून, आदाब मैडम जी
0: हाँ, आपने क्वेश्चन सुना है ना?
1: जी शेर खान राउ तालाब कट्टा अमन नगर से
0: हाँ.
1: जी, सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को भी प्यार भरा सलाम आदाब। अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको और सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सेहतमंद रखे।
0: धन्यवाद. और आपका सवाल है जो क्वेश्चन का?
1: जी मैडम, मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं बचपन में हमारा जो कुरान होता है ना वो जबानी याद कर रहा था, तो पूरा तो नहीं हो सका लेकिन जितना भी हो सका। तो उसके बाद मैंने जो हमारे उस्तादों से सीखा था मदरसे में, दीनी तालीम, कुरान पे अमल करना और अल्लाह की फरमा बरदारी करना, वही कुरान मैं अपने कुछ, एक ब्लाइंड बहन बनी है मेरी भी आयशा सिद्दीका, तो उनको भी मैं थोड़ा पढ़ाया, तो उन्होंने फोन पे ही मैं उनको पढ़ाया, उन्होंने याद कर लिए। तो और मैं दूसरों को भी यही जितना आता है उतना सिखाने की कोशिश

0: करता हूँ, खुद भी सीखने की कोशिश में रहता हूँ और दुआएं करता रहता हूँ खुद दूसरों के लिए भी, बस अपने लिए भी दुआएं करता हूँ। और सब्र करना अपनी जिंदगी से जो भी अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो हमेशा हर किसी से शेयर करते रहता हूँ कि सब्र का दामन थाम के और सादगी वाली जिंदगी बिताना, बस यही मैं कोशिश में लगा रहता हूँ दूसरों से अपनी पर्सनल लाइफ के मसले मसाइल शेयर करके उनको भी सब्र वाली जिंदगी की एक कोशिश करता हूँ मैं सिखाने की, और सीखने की भी कोशिश में हूँ मैं। मेरी कोई औकात नहीं है किसी को सिखाना समझाना, मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ सिखाना चाहता हूँ बस।
1: सीखना ही बहुत एक अच्छा काम है और आप जो आपने कर रहे हैं बहुत अच्छा है। धन्यवाद
0: जी,
1: आप हमसे
0: हमारे
1: कनेक्ट
0: मुमताज
1: करें।
0: बाजी को भी शुक्रिया कहना चाहूँगा और अफजल भाई मोमो मैजबिन बाजी सबको सलाम। और मैडम एक गाने की रिक्वेस्ट है, फिल्म का नाम है नसीब,
1: हाँ हाँ
0: कुमार
1: हाँ
0: सानू जी की
1: वो
0: आवाज में
1: आप,
0: है
1: मैं भी
0: सॉन्ग,
1: प्ले करती हूँ
0: शिकवा नहीं
1: यार।
0: किसी से,
1: थैंक यू
0: किसी
1: जी, थैंक यू कनेक्ट
0: से
1: होने के लिए।
0: यार।
2: को दबाना न भूलें।
3: मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा।

हासिल करने की नीयत हो तो इसकी अखलाकी कदर कम हो जाती है। इसके बरक्स अगर नीयत सिर्फ खैरख्वाही और भलाई की हो तो इस अमल की कदर कई गुना बढ़ जाती है। हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में भी नीयत का गहरा असर होता है। जब हम किसी काम को करने का इरादा करते हैं तो हमारी नीयत ही इस काम में हमारी मेहनत, लगन और कामयाबी की शरह को मुतासिर करती है। अगर हम किसी मकसद को हासिल करने के लिए पुख्ता और मुखलिस नीयत रखते हैं तो हम

0: मेकू बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां ना को भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियां चलाओ।
1: समय ना लीजिए, समाप्त कीजिए इस महफिल का अगला प्रोग्राम, बेदारी कायनात सिलसिले के तहत तकरीर, उनवान है हिफ्जान सेहत, पेशकश एम ए करेंगे।
2: समय अब बात करते हैं कंधे के दर्द की। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि कंधे के दर्द को सिर्फ पट्टों का खिंचाव समझकर नज़रअंदाज न करें, ये जिगर के कैंसर की इब्तदाई अलामत भी हो सकती है। अगरचे कंधे में हल्का सा मुसलसल दर्द आम लग सकता है, मगर माहिरीन का कहना है कि ये बाज़ औक़ात कैंसर की एक छुपी हुई अलामत हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक दाएं कंधे में मुसलसल फर्जी या गैर वाज़ दर्द बाद सूरतों में जिगर के कैंसर की निशानदेही कर सकता है, हत्ता कि जब बाजू खुद बिल्कुल ठीक महसूस हो, जिगर का कैंसर जो पहले ज़्यादातर उम्र रसीदा अफराद में होता था, अब 30 और 40 साल की उम्र के अफराद में भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसने माहिरीन को तश्वीश में मुब्तला कर दिया है। अंदाज़ा है कि 2050 तक इस बीमारी के केसेस दुगने हो सकते हैं, जिससे यह सेहत का एक बड़ा आलमी मसला बन सकता है। ये बीमारी पहले ही बरतानिया में तेज़ी से बढ़ रही है, मगर इसकी अलामत अक्सर मुबहम होती हैं और आसानी से नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। बरतानिया में हर साल तकरीबन 6,000 अफराद में इसकी तशखीस होती है, जबकि गुज़िश्ता दहाई में इसकी शरह में 40% से ज़ायद इजाफा हुआ है। चेक रिपब्लिक के दारुल हुकूमत प्राग के प्रोटोन थेरेपी सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जेरी कोल्प्स के मुताबिक एक अहम अलामत को अक्सर गलत समझा जाता है या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिगर का कैंसर बाज़ औक़ात फर्जी दर्द पैदा करता है, जैसे कि तकलीफ़ पेट में होना चाहिए मगर ये कंधे में महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जिगर ऐसे आसाब के करीब होता है जो कंधे से जुड़े होते हैं, इसलिए जलन या तकलीफ़ जिस्म के किसी और हिस्से में महसूस हो सकता है। ये दर्द उमूमन दाएं हाथ की जानिब होता है और वक्फे वक्फे से आता जाता रहता है, जिसकी वजह से लोग इसे मामूली समझ बैठते हैं। समय शुगर यानी ज़ियाबतीस ता हयात साथ रहने वाला आम आरज़ा है, जो हर साल लाखों अफराद को लुख्मे अजल बना देता है। फिलवक्त इस मर्ज़ की रोकथाम एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ये मर्ज़ तब लाहक होता है जब किसी भी फ़र्द के जिस्म में इंसुलिन मुनासिब मकदार में पैदा नहीं होती या काम नहीं करती, तो शक्कर खून में जमा होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद ज़ियाबतीस लाहक हो जाती है। ये मर्ज़ जिस्म के तमाम अज़ू पर असरअंदाज होता है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि नाबीनापन, गुर्दे नाकारा होने, दिल के दौरे, फालिज और पाँव के कटने की बड़ी वजह ज़ियाबतीस ही है। इस मर्ज़ की मुख्तलिफ पेचीदगियों में एक मसला मुंह की सेहत मुतासिर होना भी शामिल है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मौसर तरीन हिकमत अमली आम आगाही ज़रूरी है। मुंह की सेहत पर ज़ियाबतीस के मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। मुतअद्दिद रिसर्च आर्टिकल्स में जिक्र किया गया है कि ज़ियाबतीस के मरीजों में इसकी बुनियादी वजह खून में शुगर की मकदार का बढ़ जाना और जिस्म के पेरिफेरल आसाब मुतासिर होना, जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी से बाहर होते हैं, जिसकी वजह से मुंह में मौजूद लोआब बनाने के गुदूद इस तरह मुतासिर होते हैं कि लोआब की मकदार और इसकी बनावट दोनों ही तब्दील हो जाते हैं। ये हालत दांतों और मसूड़ों की सेहत पर बराए रास्त असरअंदाज होती है। लोआब में मौजूद ज़्यादा शक्कर की वजह से डेंटल कैरीज के इम्कान बढ़ जाते हैं। लोआब मुंह में मौजूद तेजाबियत को ख़त्म करता है, इसे बफरिंग सिस्टम कहते हैं। क्योंकि ज़ियाबतीस के मर्ज़ में ये बफरिंग सिस्टम मुतासिर हो जाता है, लिहाजा डेंटल कैरीज और मसूड़ों की

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो से घड़ी में रात के 10 बजने ही वाले हैं। आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम नए रंग।

0: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जी विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।
1: सामीन चलिए समाप्त करते हैं इस महफिल का खूबसूरत प्रोग्राम गीत सुरेले गाते जाओ। गीत सुरेले गाते जाओ में साथ में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

गाना 1.9 MHz पर। रेडियो सी घड़ी में 10:05 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। दोस्तों, साथ में हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर। अंधेरे मिट जाते हैं जब किताब खुले, अंधेरे मिट जाते हैं जब किताब खुले, हयाते नो के सभी दर ये जुमला बाप खुले। पढ़ोगे लिखोगे तो मंजिल करीब आएगी, पढ़ोगे लिखोगे तो मंजिल करीब आएगी, जला जो इल्म की शमा तो हर आज़ाब टले। लीजिए समा कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। समय न आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मैं अपनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे आलमी योम, माफी चाहता हूँ, इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर। समय तालीम किसी भी माशरे में तालीम किसी भी माशरे की तरक्की, खुशहाली और बखा के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इल्म वो रोशनी है जो जहालत के अंधेरों को मिटाती है और इंसान को शऊर व आगाही की बुलंदियों पर पहुंचाती है। आलमी योम ख्वानदेही एक अहम दिन है।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर हम अपनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं आलमी योमे खौंदगी पर। सामीन, इसलिए किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार इसके तालीम याफ्ता और बाशऊर अफराद पर होता है। इसलिए दुनिया भर में खौंदगी को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जाते हैं। दुनिया भर की तरह हमारे यहाँ भी हर साल खौंदगी का दिन इंतहाई जोश व खरोश और अज़्म के साथ मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद अवामुन्नास में तालीम की अहमियत को उजागर करना, नाखौंदगी के लिए संजीदा कोशिशों का नाखौंदगी को ख़त्म करने के लिए संजीदा कोशिशों का इरादा करना और माशरे के हर फर्द तक तालीम की रसाई को मुमकिन बनाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक रोशन और तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब माशरे का हर फर्द पढ़ना लिखना जानता हो। सामईन, इसी तरह हम बात करते रहेंगे। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो सिंहड़ी में 10:23 हो चुके हैं। सामाई अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जाओ, और साथ में हम बात कर रहे हैं आलमी योम खौंदगी पर। सामाईन कदम बढ़ाओ चलो इल्म के उस उजाले में, सामाईन कदम बढ़ाओ चलो इल्म के उस उजाले में, के जिंदगी का सलीखा उस प्याले में, जो पढ़ना लिखना सीखेगा, जो पढ़ना लिखना सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, अंधेरे चाक करके वो नए रुख पर चलेगा, जहालत एक लानत है जो रिश्तों को मिटाती है, जहालत एक लानत है जो रिश्तों को मिटाती है, मगर इल्म का साया सभी को जोड़ता है। लीजिए समाप्त कीजिए नगमा मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। इस स्टूडियो सी घड़ी में रात के 10 बजने ही वाले हैं। समय आप समाप्त कर रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, जिसके अंदर आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरेले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं आलमियों में खौंदगी पर। सामईन, खौंदगी का आगाज़ बुनियादी तौर पर लफ्ज़ों की पहचान पढ़ने लिखने की सलाहियत से होता है, लेकिन दौरे जदीद में खौंदगी का तसव्वुर महज 10

सख्त करने या अखबार पढ़ने तक महदूद नहीं रहा। आजकल डिजिटल और साइंसी दौर में ख्वांदगी से मुराद ऐसी महारतें हैं जो किसी भी शख्स को अपने माशरे में एक फ़ाल और ख़ुद मुख्तार शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाए। इसमें एक कंप्यूटर की बुनियादी समझ बूझ, मालियाती अमूर की आगाही और समाजी और अखलाकी अमूर भी शामिल है। यूनेस्को के मुताबिक ख्वांदगी इंसानी हकूक़ का एक बुनियादी हिस्सा है और ये इंसानी विकार, बराबरी और पायदार तरक्की के हुसूल का सबसे बड़ा जरिया है। तालीम इंसान की ज़िंदगी में रोशनी की मानिंद है। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। और साथ में हम बात कर रहे हैं आलमियों में खौंदगी पर। सामाइन

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। और साथ में हम बात कर रहे हैं आलमियों में खौंदगी पर। सामईन, एक नौखौंदा शख्स को रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत से मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो ना तो सरकारी मामलात को आसानी से समझ सकता है और ना ही अपने हुकूक़ से पूरी तरह आगाह होता है। इसके बरक्स एक तालीमी याफ्ता शख्स अपने फैसले बेहतर अंदाज में कर सकता है। वो माशरे के मसाइल को समझता है, अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ होता है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि तालीम इंसान को जहालत के अंधेरों से निकाल कर शऊर की रोशनी में ले आती है। माशरती और इक्तसादी तरक्की में खौंदगी का किरदार नाकाबिल इनकार है। एक तालीमी याफ्ता फर्द न सिर्फ अपने हुकूक फराइज से अच्छी तरह वाकिफ होता है बल्कि वह मुल्क की माशी तरक्की में भी अपना मजबूत किरदार अदा करता है। खौंदगी और गुरबत का आपस में गहरा ताल्लुक है। जहाँ नाखौंदगी होगी वहाँ गुरबत, पसमानदगी और जुराइम की शरह में इजाफा होगा। इसके बरक्स खौंदगी की शरह में इजाफा रोजगार के नए मौके पैदा करता है, सेहत के मैयार को बेहतर बनाता है और बच्चों की परवरिश में माओं को शऊर देता है। एक मशहूर कहावत है, जब आप एक मर्द को तालीम देते हो तो एक फर्द तालीम याफ्ता होता है, लेकिन जब आप एक औरत को तालीम देते हो तो पूरे ख़ानदान और नस्ल तालीम याफ्ता होती है। लीजिए समाप्त कीजिए यह नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर, और हम बात कर रहे थे आलमियों में खौंदगी पर। सामईन, चलो एक बच्चे को पढ़ाएं और सिखाएं हम। चलो एक बच्चे को पढ़ाएं और सिखाएं हम, दयारे इल्म की रौनक दुनिया में बढ़ाएं हम। कलम हाथ में हो तो तकदीर बदलती है, कलम हाथ में हो तो तकदीर बदलती है, अंधेरी रात में भी उम्मीद जलती है। जहालत के अंधेरों को मिटाना फ़र्ज़ है अपना, जहालत के अंधेरों को मिटाना फ़र्ज़ है अपना, हर एक दिल में पढ़ाई का जज्बा है जगाना। सभी मिलकर पढ़ेंगे तो बनेगी बात दुनिया में, सभी मिलकर पढ़ेंगे तो बनेगी बात दुनिया में, हमें इल्म हो हुनर का एक नया गुलशन है सजाना, हमें इल्म हो हुनर का एक नया गुलशन है।

ध्वनि हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। समय न आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम की छुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं योम आलमी खौंदगी पर। सामेन, योम खौंदगी हमें ये पैगाम देता है कि तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। अमीर हो या गरीब, शहरी हो या दही, मर्द या औरत, सबको तालीम के एक सा मौके मिलना चाहिए। ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम पर खसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि एक तालीम याफ्ता माँ पूरी नस्ल की तरबियत बेहतर अंदाज में कर सकती है। अगर ख़वातीन तालीम याफ्ता होंगे तो अपने बच्चों की सेहत, तालीम, तरबियत के बारे में बेहतर फैसले कर सकती है। इस तरह एक तालीम याफ्ता औरत बिला आखिर पूरे माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। आज के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी खौंदगी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और ऑनलाइन तालमी वसाइल के ज़रिए ऐसे अफराद तक तालीम पहुंचाई जा सकती है जो रिवायती तालीमी इदारों तक रसाई नहीं रखते। डिजिटल खौंदगी भी मौजूदा दौर की एक अहम ज़रूरत बन चुकी है। लोगों को सिर्फ किताबें पढ़ने और लिखने के काबिल बनाना ज़रूरी नहीं, बल्कि इन्हें कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के दुरुस्त और महफूज इस्तेमाल से भी आगाह करना चाहिए। लीजिए समाप्त कीजिए यह नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सामिन, हमें आलमी ख्वांदगी के मौके पर यह अहद करना चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद नौख्वांदा अफराद को तालीम हासिल करने की तरकीब देंगे। अगर हम किसी बच्चे, नौजवान या बालिग को पढ़ना लिखना सिखाने में मदद करेंगे तो ये माशरे की बहुत बड़ी खिदमत होगी। सामिन, अभी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे आलमियों में खंदगी पर। लीजिए समाप्त कीजिए इस महफिल का आखिरी प्रोग्राम पयाम-ए-शब। तहरीर और पेशकश होगी नदीम अख्तर जैदी की।

गहरी खामोश झील के पानी को यूं न छेड़, छींटे ओढ़े तो तेरी कबा पर भी आएंगे। दूसरों के मामलात में बिलावजह मुदाखलत, इश्तियाल अंगेजी और बेसबब तनाजात से बचना चाहिए। हर खामोशी कमजोरी नहीं होती और हर सब्र करने वाला बेबस नहीं होता। बाज़ाओकात किसी पुरसकून इंसान को बार बार आजमाना या उसकी खामोशी को चैलेंज करना खुद अपने लिए मसाइल पैदा करने का सबब बन जाता है। इसीलिए दूसरों के सुकून, इज्जत और हुदूद का एहतराम करें, क्योंकि जो आग हम दूसरों के लिए भड़काते हैं उसकी तपिश खुद हमें भी महसूस हो सकती है।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सामिन, स्टूडियो सी घड़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हात में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे

0: सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
0: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
0: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के 3रे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
0: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है. एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया 102.6 एफएम की लहरों पर। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। जिंदगी जो है वो एक किताब है और हर सफ पर लिखा होता है एक रिश्ता, और उस कभी दोस्ती का रंग होता है उसमें, और कभी मोहब्बत का जादू होता है, और कभी खामोश वादियों में बिखरी हुई कुछ यादें होती हैं। वैसे मोहब्बत का रिश्ता तो वो है जो दिल की हर धड़कन में बसता है, उसकी एक मुस्कान में हो, वो नजरों का मिलना हो, या फिर सारी मानो सारी कायनात जो है वो थम जाती है नजर मिलने पर। और साहब जब मोहब्बत होती है तो हर गली हर चौराहे उसकी बातें होती हैं। और आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो हमें जीने का मकसद देते हैं। बहरहाल एक और कलाम जो है वो आपकी नजर कर रहा हूँ, बेहद खूबसूरत है यकीन मानिए, और इसके बाद कुछ और बातें होंगी आपके अपने दिल की।

0: डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: टीम के प्रदर्शन में कहीं गिरावट कहीं तेजी देखने को मिली। सबसे पहले अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियां, आईसीआईसीआई बैंक को आज 2% का घाटा हुआ, एक्सिस बैंक के शेयरों में 1.7% की गिरावट आई, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.2% नुकसान के साथ बंद हुआ। उधर लाभ कमाने वाली कंपनियों में सम्मिलित रही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे 1.5% का फायदा हुआ, अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 1.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 0.8% लाभ के साथ बंद हुए।
1: इन द सेक्टरल इंडेक्सेस ऑन द बीएसई 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर एज्ड डाउनवर्ड। Among the top underperformance, insurance as well as top 10 banks fell 1%, private banks index dropped 0.9% and financial services lost 0.8%. In contrast, capital goods advanced 1.3%, power gained 0.7% and healthcare as well as industrials added 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 2,009 advanced and 216 remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया 34 पैसे कमजोर हुआ, 94.83 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया।

0: प्रक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर ठीक ठाक गिरावट हुई और जून मध्य के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है बाजार, किस अर्थ में ले रहे हैं कारोबार को?
1: देखिए मनोज जी, एक तो ये बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूँगा, क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो वापस फिर एक हाइटेंड मोड पर हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसमें कोई ऐसा चिन्ह नहीं आ रहा है जिससे कि हमें लगे कि शांति किसी एजेंडा पे हो या कुछ उसका वजूद हमें नज़र आए, तो जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस एस्केलेशन में है। और जब क्रूड प्राइसेस एस्केलेशन में है तो उसका सीधा असर जो है पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर आता है, भारत के ऊपर आता है, और जो भी इसके इम्पोर्टर हैं उनके ऊपर आता है। ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर ही बहुत काफ़ी असर होता है। तो उससे के मद्देनज़र मैं ये समझता हूँ कि जो अभी मार्केट में जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रहा पिछले कुछ सेशंस में, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए कि ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी दिशा नहीं मिल रही है कि कोई पीस की वार्ता आगे कोई किसी एजेंडा में हो। तो एक तो ये, दूसरा जो एक एक जो इन्फ्लेशन को लेके, कि जो इन्फ्लेशन अभी आने वाले टाइम में या तो राइज कर सकता है या फिर उसी जो हायर स्टिकी जोन में रह सकता है, जैसे कि यूएस का इन्फ्लेशन है 3.4% पे, तो उनके टॉलरेंस लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, जिसे फेड आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लेगा वो एक अनसर्टेनिटी जो है इन्वेस्टर्स के माइंड में है, जो भी कुछ ही दिनों में हमारे सामने आएंगे उनके रिजल्ट, जो भी फेड डिसीजन लेगा। और तीसरे नंबर पे जो एक ऐसा जो अनुमान था कि बहुत जल्दी मार्केट्स में एक तेजी आएगी, जब पीस हो जाएगा, जब कुछ ऐसी वार्तालाप होगी, तो वो सभी चीज़ों के ऊपर कोई ऐसा विचार नहीं।
2: So why did the market fail to find support despite select resilience in mid-cap and defensive sectors?
1: मिस्टर लेक, बिकॉज पीपल आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स एट दिस जंक्चर, अपना एंटिसिपेटिंग द हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द कमिंग टाइम्स एंड द हाई इन्फ्लेशन एंड द अनसर्टेनिटी एट द ग्लोबल लेवल। दैट्स वाई इन्वेस्टर्स आर नॉट टेकिंग द लॉन्ग कॉल टू गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट्स। वेयर देयर इज सम प्रॉफिट, देन दे आर बुकिंग सम पार्शल प्रॉफिट और द फुल प्रॉफिट ऑफ आर प्रॉफिट, बट द प्रॉफिट बुकिंग इज सिग्निफिकेंटली हाई इन द मार्केट एट दिस जंक्चर। दैट्स वाई मार्केट्स आर सिग्निफिकेंटली लो टू द लेवल ऑफ जून 2026। बट गोइंग फॉरवर्ड, इफ सम पीस प्रोसेस हैपन्स एट द ग्लोबल लेवल, देन आई बिलीव मार्केट्स विल रिकवर सूनर देन लेटर।
2: So today the top 10 banks fell 1%, private banks index fell 0.9%, and the financial services lost 0.8%. So are banks vulnerable mainly because of risk aversion, or could high crude ultimately affect loan growth and asset quality as well?
1: I believe all these three factors are working, because when the crude prices rise, then the inflation trajectory also expands and go high. Then the banks, central banks, are also in a mood of tough monetary measures. So that's why banking sector is not in that much comfortable position after observing such kind of developments at the global level, whether the West Asia or the Russia-Ukraine, their war is also intensifying. So that's why the situation is not in any direction. People are confused and they are taking their decisions to book the profit and to make some gains from the market.
2: So, in contrast to what I just mentioned about banks and all going down, we also had pharma and healthcare attracting money today. What could be the reason? Is it defensiveness? Is it export potential? Or is it
1: because
2: rupee related benefits?
1: Yes, because this is a export oriented sector actually, jo pharma and Ayush and all these related activities, like the technical stocks also. These export-oriented stocks sometimes gain when the market declines. So that may be the reason that these stocks are showing the

0: strength in the market.
1: So what does it say to you about the domestic investors being very confident when you see that the mid-cap has gained today? Does it show their confidence, or could that pocket face delayed profit booking if volatility persists?
0: No, Lekji, this is some kind of churning. When the people book their profits in the blue chips and then they shift to the other prospective mid caps, so that their investments are not out of the market. So that's why this is the shift from some profit booking in the blue chip companies, then the shift towards the mid cap, small and mid cap. So that churning is happening between the larger and smaller stocks.
2: यहाँ पर एक संक्षिप्त सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि रुपया कमजोर हुआ है, निसंदेह आज भी गिरावट हुई है, लेकिन रुपए के गिरने ने किस रूप से हमारे निर्यात को प्रोत्साहित किया है और किस रूप से प्रतिस्पर्धी बने हैं हमारे बाजार, बहुत संक्षिप्त में?
0: मनोज जी, जब रुपी डेसिलेरेट होता है, गिरता है, तो उसका उसके जब तो प्राइस कॉस्ट मार्जिन जो एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा फायदा होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, जिससे अर्निंग्स भी इंक्रीज हो जाते हैं.
3: Reserve Bank has consistently viewed fintech as a valuable partner in building the financial system of the future, the regulatory sandbox, the Reserve Bank innovation hub, and our structural and continued dialogues with startups, fintechs, and other stakeholders all rest on the conviction that better policy emerges from continuous, open, and constructive engagement. We have encouraged self-regulation within the sector. We have supported the development of digital public infrastructure that fintechs can build upon. We have been open to new ideas and new players. We have promoted responsible innovation while safeguarding trust that is the very foundation of finance. And we will continue with this approach, guided by a vision to build a financial system that is safer, more trustworthy, more inclusive, fair, efficient, and supports economic growth and public welfare. Honorable Prime Minister, this festival is a testament to what is possible when policymakers, regulators, investors, financial intermediaries, and innovators share a common purpose. I, on behalf of all the participants, express our heartfelt gratitude to you for taking out precious time for this event.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीन अहम हिस्सों को देश को समर्पित किया, जिससे फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क का काम पूरा हो गया और अब ये चालू हो गया है. इस अवसर पर एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने 2,800 किलोमीटर से अधिक लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने को 21वीं सदी के भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और देश की बदलती हुई कार्य संस्कृति का प्रमाण बताया. प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है और अपनी खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच बना रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे नेटवर्क में 50,000 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच और 2.5 लाख वैगन जोड़े गए हैं. प्रधानमंत्री ने चिप टू शिप लोकल प्रोडक्शन के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए कहा कि देश के भीतर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सप्लाई चेन बनाई जा रही है, जिसमें हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर भारी समुद्री शिपिंग तक सब कुछ शामिल है.
1: लेट्स टेक यू लाइव वंस अगेन टू मुंबई, where the Prime Minister is now addressing the gathering at the Global Fintech Fest 2026.
4: तीसरी बार सरकार बनने से लगी थी और ये हैट्रिक आप सभी के बीच आने से जुड़ी है. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है. ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं.

0: आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, हर बार जब मैं यहां आता हूं तो मुझे पहले से ज्यादा युवा दिखाई देते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है, मुझे पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं, और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। साथियों, फिनटेक की इस एनर्जी के बीच ही मुंबई में सांस्कृतिक ऊर्जा भी इन दिनों चरम पर है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। हमारे यहां हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। मैं गणपति बापा को नमन करते हुए आप सभी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री तीसरी बार पहुंचे और उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए नए विकसित हो रहे भारत के भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारियां दी। हम समझना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन किस रूप में एक विश्व समुदाय को आपस में नज़दीक लाते हैं और ये जो फिनटेक फेस्ट है वह क्या आकार लेगा हमारे आर्थिक तंत्र को, वैश्विक आर्थिक तंत्र को क्या योगदान देगा।
2: देखिए मनोज जी, जो फिनटेक है वो हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और वी आर प्राउड के हम भारत पूरे ग्लोबल लेवल पे लीडर हैं। हमारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वी आर नंबर वन, 20 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं एक महीने में, एक बहुत बड़ी बात है जिसमें जो बड़े कंट्रीज हैं वो काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसे जो सम्मेलन है इससे एक तो हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो अप्रोच है वो पूरे विश्व में उजागर होती है कि भारत में किस तरीके की डेवलपमेंट्स हैं और भारत इन इन चीज़ों में आगे अपनी लीडरशिप बना के रखे हुए है। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, जो हम विकसित भारत की तरफ जो बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, जो अभी हमारे पास 20 साल और है हमें बड़ी ऊर्जा के साथ काम करने के, तो ये जो सेक्टर है चाहे वो फिनटेक है, एआई है, डिजिटलाइजेशन है, तो ये सभी सेक्टर जो न्यू इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं ये पूरी इकोनॉमी को गति दे रहे हैं, उसकी स्पीड को तेज कर रहे हैं, जो हमारे जिसकी वजह से हम देखिए अपना जो जीडीपी है 7.8% जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज पहले होती थी उनसे कहीं ज़्यादा हमारा जो ग्रोथ है वो कहीं आगे निकल गया है। अब चाइना का ग्रोथ है वो 4-4.5% के आसपास अटका हुआ है एंड वी आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारी जो रफ्तार है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो ऊर्जा है वो पूरे विश्व में अभी विजिबल है।
3: सो इन नटशेल, GFF 2026 सीक्स टू बिल्ड ऑन इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मूव फ्रॉम पोटेंशियल टू इम्पैक्ट।
1: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आपको एक बार फिर से श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे गुजरात, जहाँ वडोदरा में एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। हमारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज देश को समर्पित कर दिया गया, इसके 3 अहम हिस्से हैं वो भी पूरे हो गए। किस रूप में ये सहायक होगा माल परिवहन के लिए और कैसे यह जो लॉजिस्टिक्स का हमारा क्षेत्र है उसे कह लें योगदान देने वाला है।
2: देखिए मनोज जी, मैं इन कॉरिडोर्स को फ्रेट कॉरिडोर्स ही नहीं, मैं इनको ग्रोथ कॉरिडोर्स मानता हूँ जी। ये भारत की ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं। जब भी कोई नए कॉरिडोर्स आते हैं तो भारत की जो ग्रोथ है और भी गतिमान हो जाती है। तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस तरीके से हमारी जो रफ्तार है जैसे मैंने पहले बताया, तो और सुदृढ़ होगी और हमारी ग्रोथ जो है उसको आगे सस्टेनेबल बनाने में ऐसी हमें ग्रोथ कॉरिडोर्स और चाहिए जो हमें और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
1: यहाँ पर एक और तथ्य हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक ग्लोबल

0: मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच तक बनाने लगा है, किस रूप में देख रहे हैं आप हब बनने की स्थिति?
1: जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए अभी हम मोबाइल में
0: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आपको एक बार फिर से श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे गुजरात, जहाँ वडोदरा में एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। हमारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज देश को समर्पित कर दिया गया, इसके तीन अहम हिस्से हैं वो भी पूरे हो गए। किस रूप में ये सहायक होगा माल परिवहन के लिए और कैसे यह जो लॉजिस्टिक्स का हमारा क्षेत्र है उसे कह लें योगदान देने वाला है?
1: देखिए मनोज जी, मैं इन कॉरिडोर्स को फ्रेट कॉरिडोर्स ही नहीं, मैं इनको ग्रोथ कॉरिडोर्स मानता हूँ
0: जी।
1: ये भारत की ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं। जब भी कोई नए कॉरिडोर्स आते हैं तो भारत की जो ग्रोथ है और भी गतिमान हो जाती है। तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस तरीके से हम हमारी जो रफ्तार है जैसे मैंने पहले बताया, तो और सुदृढ़ होगी और हम हमारी ग्रोथ जो है उसको आगे सस्टेनेबल बनाने में ऐसी हमें ग्रोथ कॉरिडोर्स और चाहिए जो हमें और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
0: यहाँ पर एक और तथ्य हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच तक बनाने लगा है, किस रूप में देख रहे हैं आप हब बनने की स्थिति?
1: जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए अभी हम मोबाइल

0: स्टैंडर्ड देखे, जो पहले चाइना कहीं आगे होता था वो भी चाइना भी उससे पीछे है। हम मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है जिसमें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है, 2 परसेंटेज पॉइंट ऊपर हम जो ग्लोबल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है, तो स्वाभाविक है कि हम एक आने वाले टाइम की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं।
1: आइए आगे
2: बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे।
1: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में देश में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री वार्षिक आधार पर 17.51% बढ़कर 24,23,201 इकाई पर पहुंच गई। CNG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक अगस्त महीने में ही EV जैसे वैकल्पिक ईंधन वाले पैसेंजर वाहनों की बिक्री पहली बार पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से आगे निकल गई और बाजार में ट्रांजेक्शन हुए 41.95% रहे।
2: यानी
1: पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी
2: हम यहाँ जितनी देर से बैठे हैं
1: जो ग्राहकों की पसंद में बड़े बदलाव को दिखाता है। अगस्त में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 16.14% बढ़े, जबकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 14.45% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही उल्लेखनीय बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में ऑटोमोबाइल की बिक्री शहरी इलाकों की तुलना में बेहतर रही है। शहरी बिक्री में 15.17% की वृद्धि हुई, जबकि आलोच्य अवधि में ग्रामीण बिक्री वार्षिक आधार पर 19.79% बढ़ी है। यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको आपसे ये प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या दिखा रहे हैं आंकड़े, खासतौर से जो ईवी की बिक्री बढ़ी है और ग्रामीण भारत में वाहनों की बिक्री अधिक बढ़ रही है।
0: देखिए मनोज जी, जो पैसेंजर व्हीकल्स है ये एक डिमांड इंडिकेटर है जिसे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। और सेकंड जो रूरल डिमांड, जैसे आपने बताया कि जो रूरल एरियाज में इनकी डिमांड और तेज गति से बढ़ी है, तो आने वाले टाइम में ये एक इंडिकेशन है कि हमारी जो डिमांड ट्रैजेक्टरी है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो हमारा जो ग्रोथ है वो भी सुदृढ़ रहेगा। सो दिस इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन द कमिंग टाइम्स।
1: आइए लिए चलें श्रोताओं आपको वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां जापान का निक्केई 225 1.7% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% की कमी आई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो इस वर्ष पिछली तिमाही की तुलना में अप्रैल जून तिमाही में जापान के GDP में 0.4% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वार्षिक आधार पर देश की अर्थव्यवस्था में इस दौरान 1.4% की वृद्धि हुई। यहां पर अगले सप्ताह के जापान में केंद्रीय बैंक की बैठक होने वाली है, साथ ही जापान के GDP के जो आंकड़े आए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, ये जो तेज वृद्धि यानी इसे हम कहें या किन अर्थों में ले।
0: देखिए जापान ने भी ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए बहुत एफर्ट किए हैं और उसी की वजह से ग्रोथ बड़ा स्ट्रांगली विजिबल हुई है, रिबाउंड हुई है
1: जी।
0: और जो मेजर्स लिए गए हैं मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है जापान की बहुत सुदृढ़ रहेगी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी
1: जी।
0: सो दिस इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो।
3: Canada's retaliatory tariffs on $28 billion worth of US goods took effect today with duties of up to 50%. The tariffs target products including steel, furniture and clothing, while fresh fish and lobster were removed following pressure from Canada's seafood industry. The move comes after trade talks between Canada and the United States collapsed last week with no sign yet of negotiation resuming anytime soon. The global crude oil prices climbed to multi-week highs as Houthi attacks on Saudi energy facilities intensified concerns about disruptions in global oil supplies. Brent crude was trading 1.7% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.4% up at $93.90 per barrel when reports last came in. What do you expect, Dr. Sharma, now that the oil is now towards $98?
0: Yes, considering the very tense situation in the Strait of Hormuz, so I believe the prices will remain elevated. Though the volatility will come in the coming times, the prices are in the rising mode at this juncture.
1: यानी किस रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, बहुत संक्षेप में?
0: देखिए जहाँ तक क्रूड का सवाल है, अगर वो $100 या इसके नीचे रहता है तो हमारी ग्रोथ के ऊपर कोई असर आने की संभावना नहीं है, हमारी ग्रोथ इंटैक्ट

0: cents per barrel when reports last came in. What do you expect, Dr. Sharma, now that the oil is now towards $98?
1: Yes, considering the very tense situation in the Strait of Hormuz, so I believe the prices will remain elevated. Though the volatility will come in the coming times, the prices are in the rising mode at this juncture.
2: यानी किस रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा बहुत संक्षेप में
1: देखिए जहां तक क्रूड का सवाल है अगर वो $100 या इसके नीचे रहता है तो हमारी ग्रोथ के ऊपर कोई असर आने की संभावना नहीं है हमारी ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी हां अगर इसमें बहुत तेज एस्केलेशन आती है तो हमारी ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती
2: है आइए श्रोताओं आपको लिए चलें सर्राफा बाजार भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% बढ़त के साथ 1,53,077 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था जबकि चांदी भी थोड़ी सी तेज थी इसके मूल्यों में 0.9% की बढ़ोतरी थी और इसके भाव 2,33,826 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहे थे और बस अब यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देना
1: जी शुक्रिया मनोज जी
0: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर शर्मा बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन Benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 550 points. Nifty settles at 23,635. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

ब्रह्मचारी फिल्म के इस गीत को आप जानते ही होंगे कि ये था मोहम्मद रफी की आवाज में। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है गीत मेरे मनमीत। मैं हूं आपके साथ अभिनीत शुक्ला, नमस्कार। और अब अगला गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म पतिता से, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ ही हमारे चलने का भी समय अब हो चुका है। तो आज के दिन, आज की तारीख, आज के गीत मेरे मनमीत के साथ ही मुझे यानी कि अवनीत शुक्ला को दीजिए आ गया। आगे सुनिए समाचार और हमेशा सुनते रहिए FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब

0: देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को कटक में सरला साहित्य संसद की ओर से कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में देवी सरस्वती की चांदी की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। इस मौके पर न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि इंसान जिंदगी में भले ही कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, लेकिन उसकी जन्मभूमि की मिट्टी ही उसकी यादों, पहचान और सांस्कृतिक विरासत को आकार देती है। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय दल को नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरिरंजन राव और दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगियों सदस्यों की मौजूदगी में भारतीय दल की आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। खेल मंत्री ने कहा कि 503 सदस्यों वाले दल में 300 से अधिक खिलाड़ी एशियाई खेलों में पहली बार भाग ले रहे हैं। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भारत भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai. The Prime Minister hailed UPI as the champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in last month. He said, Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for

मैं हूं अंजू, आपके साथ लेकर आई हूं कार्यक्रम निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चांदनी रात के सन्नाटे में बस एक ही नाम गूंजता है, तुम्हें हम पुकारते हैं इन रातों में, जब जब ये सारा जहां सोता है। तुम्हारी यादों से रोशन हो जाती है ये तन्हाई मेरी, हर एक आहट पे ये दिल सिर्फ तुम्हें ही ढूंढता है।

0: वो देखो फिजा में रंग घुला है और ये हवाएं महकने लगी हैं। तुम्हें पता है तुम्हें ये बहारें पुकारती हैं कि अब तो आ जाओ। तुम्हारे बिना ये गुलशन भी अधूरा सा लगता है। फूलों की कलियां भी अब तुम्हारे ही नाम से खिलने लगी है।
1: शील, शील,

0: कहाँ खोई हुई हो?
1: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
0: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
1: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। आओ रवि, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखें, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार। जाओ ना।

देख लो, जमाने की बंदिशें और ये दूरियां हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम एक बार पुकार कर तो देखो, हम दौड़े चले आएंगे। महफिल हो या तन्हाई, हर मोड़ पर तुम्हारा साथ निभाएंगे। तुम आवाज तो दो, कैसी भी राहें हों, हम वहीं से लौट आएंगे।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह।

भी लाइव सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों अब समय हुआ है 12:26:40। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अंजू के साथ सुन रहे हैं आप कार्यक्रम निशिकंधा।

ना होश है अपना और ना इस जमाने की खबर है। ना होश है अपना और ना इस जमाने की खबर है। तुम्हारी चाहत में ही ऐसी बेखुदी सी छाई है, जिधर भी देखूं बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है और मेरी आंखों में बस तुम्हारी ही सूरत समाई है।

चांदनी भी आज अपनी पूरी रंगत पर आई है, हर तरफ एक मदहोश कर देने वाली तन्हाई है। इस रात में आके मिल जा, क्योंकि मिलने की जो घड़ी आई है।

देखो तो हर एक नजारा तुम्हारी ही बात करता है, और ये दिल हर लम्हा सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करता है। उड़ती हुई धुंध में छिपा है एक हसीन सा पैगाम कि ये शाम का हल्का धुआं कहता है कि कोई तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता है।

न जाने कौन से मोड़ पर ले आई है ये मोहब्बत हमें, न जाने कौन से मोड़ पर ले आई है ये मोहब्बत हमें, न महफिल में दिल लगता है और न तन्हाई भाती है, आंखें बंद करूं तो तेरा चेहरा नजर आता है। सच तो ये है कि हर एक सांस में मुझे तेरी ही

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, क्योंकि मिलेंगे आपसे 1:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की

0: अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रक्षा मंत्री का श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री अरुणा जयसेकरा ने बंदर नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफगानी की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कानून मंत्रालय के अनुसार 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 1 वकील और 1 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रहेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai. The Prime Minister hailed UPI as a champion of FinTech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in last month. He said, Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in FinTech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, "World has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities."
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: द 4-डे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 इज बीइंग हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 8 टू 11 सितंबर।

दोस्तों समय हुआ है 1:11 और 13 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और शुरुआत में कुछ हमेशा की तरह अल्फाज भी।

और तुम एक ही राह पर साथ चलने लगे हैं। अब मंजिल मिले या ना मिले, इस बात का मलाल नहीं। ले चलो जहां तक ये राहें, ये घटाएं, ये हवाएं, क्योंकि अब तो हम तुम्हारे संग संभलने लगे हैं।

ना कोई वजह है इसकी और ना कोई बहाना है, बस ये दिल तुम्हारी सादगी का दीवाना है। तुम खुद से पूछो कि तुम इतने हसीन क्यों हो, वरना हमें क्या पता कि क्यों हमें तुमसे मोहब्बत है।

इन हसीन वादियों को गवाह बनाकर तुम्हें अपना बना ले, इन हसीन वादियों को गवाह बनाकर तुम्हें अपना बना ले, हम रहेंगे इन वादियों में सदा, और चाहे ये दुनिया हमें भुला दे।

मोहब्बत के कायदों से अभी तुम वाकिफ ही कहाँ हो, मोहब्बत के कायदों से अभी तुम वाकिफ ही कहाँ हो, अभी तो तुम कमज़ोर हो। इस दिल की बेताबी को यूं खेल ना समझो।

फिजाओं में एक मीठी सी खुशबू सी बिखर जाती है पल भर में, फिजाओं में एक मीठी सी खुशबू सी बिखर जाती है पल भर में, जब भी मेरी नजरों से आकर

फिजाओं में एक मीठी सी खुशबू सी बिखर जाती है पल भर में, फिजाओं में एक मीठी सी खुशबू सी बिखर जाती है पल भर में, जब भी मेरी नजरों से आकर मिलती हैं ये तुम्हारे प्यार में महकती आंखें।

खुशी के हर लम्हे में और दर्द के हर मोड़ पर मैं साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम आवाज तो देकर देखो दिल से, साथ होगा मेरा हर पल, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी।

कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात की। रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रक्षा मंत्री की श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री अरुणा जयसे ने बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी

0: तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कानून मंत्रालय के अनुसार 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 1 वकील और 1 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम ने भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी बारिश की संभावना है। विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai. The Prime Minister hailed UPI as a champion of FinTech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in FinTech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use FinTech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, "World has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities."
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
1: The 4-day Global FinTech Fest 2026 is being held in Mumbai from the 8th to 11th of September. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library, that is PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness, and enhance public engagement. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh, who arrived in Colombo on his maiden 3-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership, made the remarks during an interaction with the Indian diaspora yesterday. The Defence Minister said that India will always

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और गाने लाई हूँ बहुत ही मधुर। तो चलिए शुरुआत करती हूँ जो मेरा बहुत पसंद गीत है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगा।

देखो, अब इस पर मेरा कोई हक नहीं और ना ही कोई जोर है। जमाने भर की बातें छोड़ो, मैंने तो ये दिल तुम्हें दे ही दिया है।

जिधर से तुम आई हो वहां का हाल कैसा है? क्या आज भी उनके दिल में मेरे लिए मलाल वैसा है? मेरी धड़कनें बेकरार हैं उनका जिक्र सुनने को। हवाओं तुम ही कुछ बता दो कि मेरा हमसफर अब कैसा है।

न इससे पहले किसी को चाहा, न इसके बाद किसी की तमन्ना रही। न इससे पहले किसी को चाहा, न इसके बाद किसी की तमन्ना रही। तुम मानो या ना मानो, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी ख्वाहिश रही।

हमारी खामोशियां भी अब दास्ताने इश्क बयां करने लगी हैं, हमारी खामोशियां भी अब दास्ताने इश्क बयां करने लगी हैं। इस कदर न चाहो मुझे महफिल में, देखो कहीं ये अफसाना ना बन जाए।

महफिल में सब मौजूद हैं, पर दोनों की नजरें सिर्फ एक दूसरे पर टिकी हैं। वो देखो कैसे चुपके से देख रहे हैं एक दूसरे को, वो देखो कैसे चुपके से देख रहे हैं एक दूसरे को, जैसे जैसे जमाने की आंखें तो सोई हुई हैं।

से कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के उस पार यानी 3:10 पर आपके साथ रहेंगे सुरभि, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी आपसे। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रहेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा

दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा कराईकल में भी बारिश की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं सुरभि, आपके साथ प्रोग्राम है हम राही। कभी कभी हमारे जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसके साथ रहते हुए हमें किसी खास पल का इंतजार नहीं करना पड़ता। उसकी मुस्कुराहट और उसका साथ ही दिन को बेहतर बना देता है। जी हाँ, क्योंकि प्यार में बड़े बड़े वादे नहीं किए जाते और प्यार में सिर्फ प्यार होता है। चलिए आगाज करते हैं हम राही का इस गीत के साथ।

कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, उन्हें देखते ही किसी की याद हो आती है, कोई आवाज़ सुनाई देने लगती है और दिल अचानक उसी इंसान के पास पहुंच जाता है जो दिल के करीब होता है। तस्वीर तेरी दिल में आज भी वैसी ही है, वक्त बदला, मौसम बदले, मुलाकातों के बीच फासले भी आए, लेकिन उस तस्वीर से जुड़ा एहसास नहीं बदला।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जी हाँ, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी शाम फिर से सामने आकर ठहर गई हो। हवा में हल्की सी ठंडक है, आसपास खामोशी है और दिल में किसी अपने की याद। ऐसे में संगीत सिर्फ संगीत नहीं रहता, वो एक एहसास बन जाता है। अगला गीत कुछ ऐसा ही है जिसमें मोहब्बत की खूबसूरती है, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस किसी अपने के, किसी खास के लिए दिल में एक उठती मीठी सी

कसक है, किसी को चाहना यही तो शायद चाहत है कि उसका नाम आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी याद आते ही मन थोड़ा सा भर जाता है, ठहर जाता है उसकी आवाज़ सुनने के लिए। तो चलिए, अगर आप भी किसी को याद करते हैं तो उसके लिए ये गीत, उसके नाम ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। वक्त हुआ है 3:46। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है काजल, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में।

कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और उन्हीं गीतों में से कुछ गीत हम आपके लिए हमेशा चुन कर लाते हैं। और अगला गीत ऐसा ही है जिसमें भरी है प्यार की मिठास और किसी अपने के साथ यूं ही चलते रहने की खूबसूरत ख्वाहिश।

और इसी गीत के साथ हमराही का ये सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ सुरभि। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और ढेर सारी खूबसूरत बातों को लेकर। जी हाँ, सुबह की ताजगी और एक अच्छे संगीत के साथ जब दिन की शुरुआत होती है तो वो एहसास ही कुछ और होता है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं सरगम फिल्म का ये गीत।

0: अरुणिमा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख दो पहलू की तरह चलते हैं। सुख हो, सुकून हो, चेहरे पर मुस्कान हो, दिल में अपनों के लिए प्यार हो, और इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ जब दिन की सुबह शुरू होती है तो एक अलग ही जज्बा होता है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का, और ज़िंदगी को और थोड़ा सा खूबसूरती से जीने और जानने का। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको ईश्वर फिल्म से।
1: तार सप्तक, मंद्र सप्तक,

अरुणिमा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। सुबह की शुरुआत अगर सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती के एहसास के साथ हो तो पूरा दिन कुछ अलग ही महसूस होता है। जिंदगी में जो सच्चा है, जो शुभ है, जो सुंदर है, वही हमारे दिल को सुकून देता है। और इसी खूबसूरत भावना के साथ चलिए सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम अरुणिमा सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता, रास्ते में कई दफा मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन हर मोड़ पर हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो चलिए इसी एहसास के साथ सुनते हैं ये गीत।

हमारी और आपकी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने तुरंत सहायता पहुंचाई है और भारत राहत और बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी नेपाल का सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। श्री स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है भोर सुहानी, मैं हूं सुरभि आपके साथ। भोर की ये सुहानी बेला एक नई उम्मीद, नई रोशनी और एक खूबसूरत सफर और उसका संदेश लेकर आती है। तो इस प्यारी सुबह को संगीत के साथ और भी यादगार बनाते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं भोर सुहानी प्रोग्राम के इस गीत के साथ।

जिंदगी एक सफर है और हम और आप हम सभी इस जिंदगी में मुसाफिर हैं। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ याद बनकर रह जाते हैं और ये सफर यूं ही आगे बढ़ता रहता है।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भोर सुहानी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि हम अकेले हैं और कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे ही वक्त में एक भरोसे की आवाज़ बहुत मायने रखती है, जो ये कहे कि हिम्मत रखो, रास्ता भी बाकी है।